के आगे राखिए जित से दरबार मौके बोलन बोलिए जित सुंदरे प्यार अमृत वेला सचना वदियाई विचार करमी आवे खपरा नदरी मोक द्वार नानक एवे जानिए सब आपे सचियार तपिया न जाय कीता न होय आपे आप निरंजन सोय जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविये गुनि निधान गाविये सुनिए मन रखिए बाओ दुख पर हर सुख कर ले जाई गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहिया समाय गुर ईश्वर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माय जय हो जाना आका नाई कहना खतन न जाई गुरा एक दे भुजाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई।

गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। Prepare for Satsang Nama meditation.